0: ठीक है, मेरा और कमी बोनी रावर कमी ख्याल देनी नसेहत दी फमी होती तो कौन नसेहत अम्मी देनी बस है कि रंगड़ों उड़े शे तो एरों दे दुनिया के कामयाब कुछ कंगे कुछ को आने तो हम वाले रंगड़ों नसेहत का को माहिल मिनिमली गुरुत्व विस कोस के हम प्रोग्राम ने बंदे आठ वाले इन्नत सेंगे
1: लबा
0: उम्मीद करूँ अर्नफ्ता इस बदलो आने कम
1: लबा
0: माहिल दे मिया तो कौन कम होती माहिल के तावल करे इफा ट्यूशन अदा हम ट्यूशन को स्वर रंगड़ किया बच्चे हैंगे महिला मिहाय साबुन वाक्य वेला महिला वाक्य वेला फणिकस्ती कुदिन वर रीति हदिया मैं

0: mamma, ma dua veja.
1: Tarifla, soni agat buni. Mamma ibece mi ke muluwa.
0: Papa, gadi je haniye.
2: Tarifla madu kobbada.
3: Sonia, debel maasha school na.
4: तुम ही नहीं तो कहा था कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: मामा
4: किस्मत से भी
5: मामा फोन है का हाँ माधवार या तैयार दावी थाना कड़ी वाइपर कराना
0: मामा वैस फोन का डोंटा
6: कोको तोंते कमी कड़े गाले नूले वेने, दे सोनिया गाता।
7: ऐहन यं गुलुंता बदही कुराफा दें, एम्मे गातु गावा गुलुंता का, एम्मे फुरतमे इस्कंदे मा।
8: कामिया प्यारे Biar far furang kurang bayi nunta.
9: Guna dengkar.
10: Kom mehoni hiru doh ge Hindu nu nu agit fanaraga. Repeat, honi hiru doh ge haviru hataru agit fanaraga. Adi adit doh ge haviru hataru agit fanaraga.
9: Engha satar stek 69 kilohertz medium wave, 89 megahertz FM band.
10: Hamai kani dibe hiraja ke adum.
11: Hima bih jehifa wa mihaku kessa kin bih yalumun wage tere virus feture gendiyumun hima bih feture bandu taneganama dega diren hairu wanden wage tere ga virus hore
12: virus ke asar huri tanega allumafo lola nefata angaga allumun hima bih feture
13: bayya dekola difa ibar nemmihun adi measles vaccine ge de dose furihamu ko faanuwa farataka bali jehumuge fursat bodu
14: Hima bihi ge alamate feni jenama lasnu kurwa sihi farwa hodawa.
15: Assalamualaikum.

0: हम दोनों साथ होंगे तो मुझे लगता है मैं पुल से रात से भी गुजर जाऊंगी।
1: कोई भी तूफान, कोई भी मुश्किल हम दोनों को दूर नहीं कर सकते।
2: मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा तजीन।
3: मैंने कुछ नहीं किया।
4: मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहती हो। फिर
5: किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने।
3: मम्मी मर गई हो तुम हमारे लिए।
0: मैं जानती हूँ इस पैनिक के पीछे कौन है।
1: कौन?
0: तुम। आई बड़े लवर बॉय।
6: वाह जी वाह, क्या कमाल की एक्ट्रेस हो तुम।

0: ginamiyuna geveshe aniyaki ma burkhamenu ifadaniya tan iturwani ehimbe geveshe aniya ta madukurum ga aniyali be farat ki malumat kama be he farata hissa kurba
1: waguta halataiku lobi imtihan kurave mi duniyega darifru deke intihaya lobwa bappai
2: darifru ahadewa bappa kata nedum kurin ekala wahaka adu halan teida
3: ekam bappai promise weba kokka wara kurin nu nedan
1: e bappa ge hofen dekun huttali darifru ge hofenta hakikata kan hata adinu mattaka e bappa ge duniye abad kurun huttali ए दारीफुल के दुनिये फुरी हम को दिनों मट्टका
2: आर मैं तो कुल्दा फरमाते आते स्कूल ये ने मंजरोड
1: लफ्स तक का कुंपुने नो देवे ने कुरुबानी के वाहक रिहों हुरी हिते के वाहक
4: दिवे ही राज्य का ढूंगे निस्तनी
1: रिसाही
5: कोमे बुरा सच दो है कि मैं दुरुकुरे एकार गड़ी फड़ा रहा।
6: रिपीट हमेरे दिहगड़ी तिरी हूँ, आदि हुकुर दुहगिरे मैं दम बार गड़ी तिरी हूँ। एंगा 7640 नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव, आदि 89 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड।
5: दिवे राज से क्या डू?
7: रक्का को फोन फैसा है जाके आते कुम्बाजी बुआने था।
8: हज़्ज़ दियो मट्ट का दक्का फोन फैसा है जाके आते क्या ने था।
7: आतुगो हूँ ना गहना है जाके दक्का ने की ही ने।
9: तिहुरिया स्वागत है के जवाब ए प्रोग्राम को।
4: जाके
7: होमधुगे हिंदुनो दिह कट तिरी हूँ रिपीट होमधुगे रे दिह जायरो आदि होनहिर धुगे मेंदुरो एके जायरो
1: इंगा 7640 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड हमाई कनी दिवि राज्य गडू